उन माँ यावन है विसरी गया देन मैं सीत मिठिया दे ही ना नांग कच्चर तियन पुलान द हित का इटू बुनात नाउनात पर दुनाट पास ही ने आखिते ऐ हंगे मट नामा के वो थोया गन बैवा गे ना ऐ तमाय आदरे हरी अदमंग ओबत्ते का कथाकरण कल्पना करे मैंने मैं विधिह दया समार देवला पी मागारी ना ओने कमट ने मैं ओने निसाम मागारी ना ओने तमाय ऐ उनत आदरे निसाम मागारी अस्ते निकाटो दा मंदानुवा इकहला मा ओबटे नमक गमकिया न बैरी वित्तिया आदरे निसाम मागारिया ना कोहम दिक्या नो के नमक गमकिया न प्रसिद्धि एक मटे कोहम हरिये गने किया न दोने बिंदुए हट सी एकल हाय अनुपहाय अनुपहाय अनुपहाय

0: प्रिय सबंध हरियटम मंदारम रहताई मिनिटो 41 एकटा अपि हम्ब वेमु
1: वसंत यदि हम वन सुलंग समग
0: नितफेम फेसबुक पिटु ए
1: पहिन
0: पहिमु
1: तारी मट
0: ठीक वेलावक

क्यों इतना आदरे बिल आदर कौरुत अनवरत अनपेक्षित महामिहिरी हंगी मक आदरे तरंगा